सामिन, आप हमें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से समाप्त फरमा रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के नशरियात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा पता नोट फरमा लीजिए। इंचार्ज उर्दू प्रोग्राम, वॉइस ऑफ तुर्की, पोस्ट बक्स नंबर 333, पोस्ट कोड नंबर 06443, यानी शहर अंकरा, तुर्की। हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@trt.net.tr और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rt

सामिन, अगर शॉपिंग मॉल में दाखिल होते वक्त कोई आपको दस्ती तौर पर तलाश नहीं करता है, या अगर ज़मीन के अंदर फंसी कुछ धातें तलाश करने के लिए बहुत मुश्किल हालात में महीनों तक खोदने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है। मेटल डिटेक्टर को 19वीं सदी की सबसे अहम दरियाफ्तों में से एक समझा जाता है। 1800 की दिहाई से बहुत से साइंसदानों ने महसूस किया कि वो अपने इल्म को बिजली और बर्की मकनातीसी के शोबों में इस्तेमाल करके ज़ेर ज़मीन धाती कानों को तलाश कर सकते हैं। इस तरह मेटल डिटेक्टर की इजाद का दरवाज़ा खुल गया। मेटल डिटेक्टर के मूजिद के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ज़राए में मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं, जो साइंसी दरियाफ्तों के जदीद दौर की अहम तरीन मिसालों में से एक हैं। मुख्तलिफ अदवार में इस शोबे में काम करने वाले 5 साइंसदानों के नाम खास तौर पर नुमाया हैं। इनमें बरतानवी साइंसदान सर विलियम हर्शल, माहिर तबियात विलियम बर्मिंघम, फ्रांसीसी मूजिद गस्ताव ट्रू, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो ट्रूव के काम से मुतासिर थे और टेलीफोन की इजाद के लिए भी मशहूर थे, और साइंसदान गेरहार्ड फिशर के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। इन नामों को आजकल इस्तेमाल होने वाले मेटल डिटेक्टर के मूजिद के तौर पर समझा जा सकता है। साइंसी नज़रियात और तकनीकी आलात के साथ जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में और बहुत मुख्तलिफ मकासद के लिए तैयार किए थे। मिसाल के तौर पर, जबकि फ्रांसीसी मूजिद गस्ताव ट्रू ने हाथ से पकड़े हुए एक आले को ख़ास तौर पर जख्मी फौजियों के जिस्मों में गोलियों के कवर को तलाश करने के लिए तैयार किया, माहिर तबियात विलियम बर्मिंघम का वाहिद मकसद ये था कि वो इस आले के साथ जेर ज़मीन छुपी हुई सोने और चांदी जैसी कीमती धातों को तलाश करेंगे। तहम एक के अलावा इन तमाम नामों के काम आलमी राय आमा और साइंसी हलकों में ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं कर सके और उनकी ये सिर्फ ज़ाती काविश ही रही। साल 1920 तक पूरी दुनिया अपने पीछे एक ऐसी जंग छोड़ चुकी थी जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं और ख़ासतौर पर ज़मीन के नीचे छुपाई गई बारूदी सुरंगों की वजह से हज़ारों नौजवान फ़ौजी माजूर हो गए। इसके अलावा 4 साल तक जारी रहने वाली इस खूनी जद्दोजहद से कोई मसला हल नहीं हुआ, उल्टा ये कि नए तनाज़ात को जन्म देता रहा और उसी वजह से यूरोपीय रियासतों को एक नई आलमी जंग की तरफ घसीटा जा रहा था। यह फ़ौजी मैदान में तहकीक थी जो दूसरी जंग अजीम से पहले शुरू हुई और बतदरीज तेज़ होती गई, जिसने मेटल डिटेक्टर्स की तकदीर भी बदल दी। इस शोबे में काम करने वाले नामों में से एक साइंसदान का नाम गेरहार्ड फिशर था। जर्मन नजात अमरीकी गेरहार्ड फिशर का बुनियादी मकसद जमीन के अंदर मौजूद धातुओं की खोज के लिए मेटल डिटेक्टर ईजाद करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा आला बनाना था जो बर्की मकनातीसी लहरों के साथ काम के खाली इलाके में सिम तलाश करे।

ताकि फौजियों को पहुंचने से रोका जा सके। मैदान जंग में हारे फिशर ने इस आले को बनाया और यह कामयाब रहा, लेकिन उसे एक छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। आला, जिसने आमतौर पर फील्ड ट्रायल्स के दौरान मौसर तरीके से काम किया था, कुछ इलाकों में गैर मामूली नतीजे दिए। फिशर ने इब्तदाई तौर पर सोचा कि आले में खराबी है, लेकिन उसकी नई ईजाद, जिसने कहीं और बहुत अच्छी तरह से काम किया, उसी तरह की बेजाबतगियों को जाहिर करता है, ख़ास तौर पर जब यह किसी खास इलाके में आया जिसमें चट्टानों में धातें मौजूद होती थीं। बहुत सी कोशिशों के बाद फिशर ने दरियाफ्त किया कि उसके आले में कोई ख़राबी नहीं थी, कि चट्टानों में मौजूद धात की कानें आले को मुतासर कर रही हो, और उसने महसूस किया कि अगर धात की कान से बर्की मकनातीसी बीम में खलल पड़ सकता है तो उसके लिए मशीन को डिज़ाइन करना मुमकिन होगा जो ज़ेर ज़मीन धातों का पता लगाएगी। ये नतीजा जिस तक वो पहुंच गया अगरचे इतफाक से था, लेकिन साइंसदान गेरहार्ड फिशर को जदीद मेटल डिटेक्टर के मौजूद का खिताब हासिल करने के भी काबिल बनाया। फिशर ने 1925 में पहला हाथ से पकड़ा हुआ जदीद मेटल डिटेक्टर तैयार किया और 1931 में अपनी नई ईजाद को पेटेंट करवाया। दूसरी जंग अजीम में भी नए डिटेक्टर्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी अहमियत भी साबित की थी। आसान अल्फाज में डिटेक्टर बर्की मकनातीसी नशरियात को किसी खास हदफ या माहौल में भेजता है और वापसी सिग्नल का तजिया करके धात और गैर धात में फ़र्क करता है। इस तरह आसानी से मालूम किया जा सकता है कि किसी शख्स के पास बंदूक, मोबाइल फ़ोन है या लाइटर, और ज़मीन के नीचे दबी हुई बारूदी सुरंगों या कीमती धात की बारूदी सुरंगों की सही जगह का भी तायुन यह कर सकता है। आजकल मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल के इलाके में बतदरीज तौसी हुई है। जदीद मेटल डिटेक्टर्स बहुत से शुबों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें आसार कदीमा की खुदाई से लेकर टेलीफोन, कुदरती गैस और निकासी आप के निज़ाम का पता लगाने तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अहम इजादात।